अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705505508 9705505507 मनसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के सहर पोक।

0: तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856126 9852510504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।
1: हेलो
2: हेलो क्रिस्पी, सुन न, घरमा चाहिने खाद्यान्नको सामान सकिएको छ, यी सम्पूर्ण सामान किन्न कता जाने होला?
3: किन यताउता गर्नु पर्यो? पोखरा 7 मासबारमा रहेको पीएसटी टेरसमा जाऊ न, त्यहाँ त गुणस्तरीय सामान सस्तो र सुफत मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: सम्पर्क पीएसटी ट्रेडर्स पोखरा 7 मासबार श्रीकृष्ण माविदेखि बुलाउँदी लेक साइड जाने बाटोको बीचमा प्रोप्राइटर टेकराज पौडेल मोबाइल नम्बर 9860309362 9560334 खाद्यान्नका सम्पूर्ण सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ, साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।

0: बाकेलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार चिप्पेढुङ्गा पोखरा सम्पूर्ण किसिम का खेलकूद का सामग्री होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिने ठाउँ विभिन्न देश का जर्सी सुपथ मूल्य में पाइन्छ आफूलाई मन पर्ने देश को जर्सी का लागि सम्झन होस् बाकेलाल स्पोर्ट्स प्रोप्राइटर मोहन कुंवर संपर्क 98 160 62 983 98 5 50 52 855 समझनु बाकेलाल स्पोर्ट्स मुक्त विशाल बजार
1: आयो है मासू ताजा मासू दो

0: तुम बैंगलोर कब जा रही हो?
1: मैं बैंगलोर नहीं जा रही, बैंगलोर जाना कैंसिल।
0: तुम्हारे बैंगलोर में क्या करूंगा? बैंगलोर तो तुम जा रही हो।
1: मैं नहीं जा रही बैंगलोर, तुम भी नहीं जा रहे हो, कोई बैंगलोर नहीं जा रहा।
0: तुम
1: लिसन, यू नॉट गुड अ बैंगलोर एंड नो ट्रबल मी नाउ। तुम्हें तो रो रही हूँ मैं, और क्या, तुम्हें तो रोए जा रही हूँ।
0: अरे मैं हर बार तो रोती
1: हूँ। हर बार मैं फीलिंग हो रही
0: हूँ। चलो हम लोग साथ
1: में। यू इंडियन, यू इंडियन, यू स्टुपिड।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705508 9755055 07 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरामा।

0: घर पे बहुत बोर हो रही
1: हूँ,
0: कहीं चले?
1: कहाँ?
0: कश्मीर?
1: इस महीने नहीं बाबा, बहुत बुकिंग है। अगले महीने?

0: ये आयशा सिगरेट पीती है।
1: मुझे पता है माँ।
2: अरे वो कभी कभार ऐसे ही।
0: पता है तुझे, तेरे रूम के दरवाजे बंद रखती है वो। इस घर के दरवाजे आज तक कभी भी बंद नहीं हुए, ये इस घर में नहीं चलेगा।
2: अरे तो माँ लिखती है अंदर, दरवाजा खोल के लिखेगी क्या? उसका भी घर है ना।
1: अच्छा करता हूँ, मैं बोलता हूँ।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरामा।

स्टडी एब्रोड जुनसुक विषय में उच्च शिक्षा का लागि अस्ट्रेलिया यूएसए यूके कैनेडा न्यूजीलैंड हजुर को गंतव्य विश्वासिलो र भरपर्दो शैक्षिक परामर्श केन्द्र बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कंसल्टेन्सी पोखरा सम्पर्क बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कंसल्टेन्सी पोखरा चार सिद्धार्थ चोक फोन नम्बर 061-570-736 98-560-2325 98-086-35-480 साथै आईएलएस र पीटीई का कक्षाहरू विशेषज्ञ टोली र गुणस्तरीय तालिम का साथ प्रदान गरिन्छ।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705050508 9705050557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के शहर पोखरा।